अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आए मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सकल मह आप अनेक जुगत रथ थाप ओथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड।

आप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कह किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की। जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से विरले थोड़े। जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े।

करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

प्रभ बेअंत किश अंत नाहे सब तिसै करणा अगम अगोचर साहेबो जिया का परणा हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करणा।

जहे अबोल तह मन ना रहा वा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई, अलह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बटक बीज महरव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे पायो अपांग।

तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पू।

पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेवहो जो उपजाय सो अलाख अपेवहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

जहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, तीरज तड़ी बंधावे कामन, श्री रंग सुरमा देई।

पहला गुरका शब्द मने मह मुंद्रा खिंथा खिमा हंडावाऊं जो किस करे भला कर मानो सहज जोग निध पावाऊं।

चौथा गुण गावां गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख बखाणी जब जब नाम मन भया आनंदा सत सत सतगुर नाम दृढ़ाया सत सत सतगुर नाम।

गुरबत हर गुण बोलो जोगी। इहो मनुआ हर रंग पेन जोगी, हर देहो मती उपदेश। जोग जोग हर हर एको वरतै, तिस आगे हम आदेश रहाओ। गाव है राग भांत बहु बोल है।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिस नेह चल रहना। जीवत मुए मुए से जीवे हर हर नाम अवखद मुख पाया गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा जिस छूटै त्रिकुटी तिस निज कर वासा।

रहाओ। निकट आन प्रैसेज तरी कान कढ़न ते शूत परी, मंदर मेरा शब्द उजारा, आनंद बिनोदी खसम हमारा।

दृढ़ाया, पाए पर है सतगुरु कै जिन भरम बिदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहा। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई।

आढ़ आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल कृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

हरि राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

शिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिए सगल पराश।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

वे पापी सदा फिरह अपराधी मुखों अपर सकहाव है सदा सदा फिरह अभिमानी सगल कुटुंब डुबाव है।

भिष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद न बरखे नाद कहां जो समाना पार ब्रह्म परमेश्वर मा।

कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोई आसा। जो मैं रूप किए बहुतेरे अब हुन

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ।

ब्रह्मत फिरत बहु जन्म बेलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बेख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगहन मुक्त पय जोत समा

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तार।

जिन लागी हर लिव तुम्हारी जी जंत सभे ही नाचे नाच है खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाच है जिन गुरमुख।

कह फूल है आनंद बिखै सोग, कब हसनो कब रोइये, कब हू मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग धोइये, कोय न मेटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइये, कहो नानक।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बिकार।

निर्मल मन करण कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

सुख होई गुरजेवड गुरजेवड दाता मैं अवर ना कोई वडहंस महला चौथा।

हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दिरहाया हर हर

भगत दुख सुख समत कर जाने। हर हर नाम हर राता हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम सब बिन से हो मैं पापा राम। जप हर हर

बयाण ज्योतिष पावे समरथ सोचिए हिलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस्चारो गुण

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख,

नानक गुरमुख सदा सुख पावे अन दिन हर बैरागी पौड़ी से गुर सिख तन तन है जिन्नी गुर उपदेश सुनया हर कन्नी गुर सत गुर ना

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनिस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलताओ ठाक रखो कर अपने गुर मिले ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याय दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब

ज्ञानी हर हर सफलो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपयो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सबला थी फूख फुखानी।

आई किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपा।

सुख है स्वामी, शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा, पल एक माहे तराया, पूर दया सर्व छाई, गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नानक सदा सिमरी, सर्व दुख पै

बिन गुर मूड भये है मन मुख ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफलो जन्म सना।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरा ना काहूं बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा।

सुरह आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है।

सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहुं बिनसे सब रोग श्लोक कुटंब जतन करण माया अनेक उदमहें।

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर्ण काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप बुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान नाम